0: हम के दिन चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: सेव करो माइटी 10 मेगा वेस्टगेट और हेंडरसन में विद 25% ऑफ पिंक स्टफ क्लीनिंग और नोवो वायर वार्डरोब्स और 50% ऑफ सिलेक्टेड सिस्टम प्लस स्पेंड $20 एंटर ऑनलाइन एंड गो इन द ड्रॉ टू विन 5 ग्रैंड एंड जून 30th टीज एंड सीज अप्लाई।
2: मां एक चुबाती होती है ना? हां एक
3: चुबाती मुझे भी। जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा। कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाएं, खुशियाँ खिलाएं।
4: Snooze and save at the Beds RS Winter Sale on now with up to 50% off selected Sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden queen size now from 2799. Check out these deals and more at Beds RS Manikau and Pukekohe, where dreams begin.
5: Wo indelible homes wali kahani sunao na.
6: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
7: And award goes to Indelible Homes.
6: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite Master Builder.
8: Kahani of Indelible Homes.
9: TradeDepot.co.nz. Shop now at Trade Depot, New Zealand's number one bathroom, kitchen and appliance online store. Vented dryer just 289, heat pump dryer just 599, all-in-one washing machine and dryer 799. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
10: TradeDepot.co.nz.
11: Oh my, oh my. Grey South Road, greater than ever.
12: South Auckland's buses just became a lot better.
11: Weymouth Road, way better buses.
12: With better bus routes, more frequent buses, more early morning and late night buses, and more.
11: Woody, no worries. MIT, A-OK.
12: Search AT Better South Auckland Buses for details.
11: Airport, got your transport.
12: Then turn up and go.

0: Yo.
1: Radio Pop.
2: यारो मुझे मुआफ करो, यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम, पी लीजिए हमारे हाथ से दो चार जाम, पी लीजिए। पिलाए जब कोई माशूक अपने हाथों से शराब, फिर नहीं रहती।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
2: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
1: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
2: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
3: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
4: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: The savings are fully stocked this weekend at Briscoe's, with huge savings store-wide, like an incredible 40 to 60% off all electrical. So rush into Briscoe's, stock up and save. Sale ends Sunday. See online for T's and C's.
2: गाड़ी चलती रहे, टेंशन बिल्कुल नहीं. ऑकलैंड का ट्रस्टेड नाम RPS टायर्स. कार, SUV, ट्रक या फोकलिफ्ट, हर व्हीकल के लिए टॉप क्वालिटी टायर्स, पार्ट्स एंड टूल्स. डायरेक्ट इंपोर्टर्स ऑफ रोड वन एंड अदर क्वालिटी टायर्स विद अ सॉलिड प्राइस बीट गारंटी. 4x26 ईस्ट तमाकी रोड, पापा टोटोए, प्लस 24 आवर मोबाइल सर्विस. फॉर बल्क ऑर्डर्स कॉल रॉन ऑन 0221753941 और विजिट rpstyres.co.nz और देयर फेसबुक पेज. RPS टायर्स, ड्राइव सेफ, ड्राइव स्मार्ट.
3: Grace Off Road, greater than ever.
4: South Auckland's buses just became a lot better.
3: MIT, A-OK.
4: With better bus routes, more frequent buses, and more.
3: Airport, got your transport.
4: Search AT, Better South Auckland Buses for more.

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन।

0: कलाकारों से फीजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फीजी भजन्स, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स।
1: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz। Available at all leading stores.
2: Fiji is on sale now at Flight Center. Fly Fiji Airways return from $699 per adult and $449 per child. Includes checked baggage, meals, and in-flight entertainment. Book online or in store now. Fees, T's and C's apply. Flight Center, your center for travel.
3: Right now at Supercheap Auto, get 25% off store wide. Save on Golf Western, Century, Rhino Rack, and more. Shop now, ends tomorrow. T's and C's apply. Make it super. Super Cheap Auto.

0: big save, we work hard every day to keep our furniture and bed prices low, so you can always get New Zealand's best value furniture and beds. And today, you can save big. Save big on lounge suites. Lounge suites now from $19.99. Save big on sofas. Sofas from $6.99. Save big on beds. Get the snow bed. Queen, king or super king, only $9.99. Save big on recliners. Get two recliners for $6.99, only at Big Save.
1: At Kogan Mobile, we want to help Kiwis experience mobile Aussie style. That doesn't mean saying, yeah, nah, hey, go on, flyman galah. It means texting emojis without being charged 50 cents and calling your mom without having to call your accountant first. Right now, get a 180GB yearly prepaid plan for just $240. That's 15 gigs of data per month for less than $21. So say you beauty to true Aussie value from Kogan Mobile. T's and C's apply.
2: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
3: Hum, playing Bollywood's biggest hits.
1: Yo.
3: Big Radio Pub.
4: एक बजकर 25 मिनट हुआ है एंड यू मस्ट हैव बीन वंडरिंग कि रेडियो पब तो यार 12 बजे शुरू हो जाता है, ये रेडियो वाला अनाउंसर गया तो गया किधर. वेल, हम कहीं नहीं गए, यहीं पर थे, लेकिन कुछ आईटी इश्यूज के कारण आई वॉज़न एबल टू गेट ऑन टू द सिस्टम. और यहाँ पर बैठकर जैसे आप सुन रहे थे कि भाई हम कहाँ गए, हम भी सोच रहे थे कि लोग क्या सोच रहे होंगे. तो फाइनली the IT people have sorted my access out. I don't know क्या हुआ और वो लोग भी नहीं जानते कि हुआ क्या, लेकिन अंत भला तो सब भला. I finally managed to get onto the system. तो आइए, रेडियो पब का सिलसिला वैसे 12 बजे से शुरू होता है, लेकिन अभी से लेकर शाम 6 बजे के बीच में मैं जिकाश आपके साथ में शामिल हो चुका हूँ. कैसे मिजाज हैं आपके? टुडेज डेट इज 6/6/26, मतलब कि 6 तारीख जून हो चुका है. विंटर का जो मौसम है ये ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है और वी आर 6 डेज इनटू विंटर. और जैसे ही विंटर आया, जो धूप ही धूप हम एंजॉय कर रहे थे ये घट गया और बादल छाने लगे. तो छाए छाए बादलों का ये मौसम आप एंजॉय करते रहिएगा, हमारे साथ अभी यही बने रहे, क्योंकि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, 6th of June है, क्योंकि शायद आज आपका स्पेशल डे है, तो आपको भी हम आपकी खुशियों में शामिल होने वाले हैं और अपना संदेश हमारे पास भेजते रहे. इसके अलावा सुपर रग्बी पैसिफिक क्वालिफाइंग फाइनल्स, आज दो दो मैचेस खेले जाएंगे. कल क्वालिफाइंग फाइनल्स का पहला मैच हुआ बिटवीन हरिकन्स एंड ब्रम्बीज की बहुत ही बुरी तरह से हार हुई एट द हैंड्स ऑफ हरिकन्स. यार, हरिकन्स आर आउट देयर टू डू समथिंग दिस ईयर, तो ऑल द बेस्ट टू देम गोइंग टू द सेमी फाइनल्स. लेकिन आज जो दो क्वालिफाइंग फाइनल्स होने वाले हैं, द फर्स्ट वन बिटवीन क्रुसेडर्स एंड द ब्लूज इन क्राइस्टचर्च, और फिर चीफ्स किनसे खेलने वाली है, क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो यूं ही हमारे साथ में बने रहे, वी विल फिल यू ऑन अबाउट दिस. इसके अलावा NRL में भी काफ़ी सारे खेल होने वाले हैं, और इसी महीने से फीफा वर्ल्ड कप भी शुरू हो जाएगा. आपकी टीम क्या इन्होंने अच्छी तरह से प्रिपरेशंस किए हैं? कुछ अलार्मिंग न्यूज़ आए हुए थे अबाउट द कंडीशंस ऑफ द फुटबॉल फील्ड्स, और कुछ नए रूल्स को भी टेस्ट आउट किया जाएगा बाय फीफा इन दिस फीफा वर्ल्ड कप. इन सभी के बारे में जानकारियाँ आपको हम बताते रहेंगे. मैं हूं जिकाश, आप सभी का स्वागत कर रहा हूं ऑन 104.2 FM एंड ऑन रोवा. रेडियो पब का सिलसिला अभी से लेकर शाम 6 बजे के बीच में. क्या रहा

0: You're listening to Chikash.
1: Alright, तो सबसे पहले बातें करते हैं अबाउट सुपर रग्बी. आज बम्पर ऑफ क्राउड लगने वाला है इन क्राइस्टचर्च, जहां पर इनिशियल टिकट्स 20 ही मिनट्स में सोल्ड आउट हो चुके थे. उसके बाद में एडिशनल टिकट्स ये जारी किए गए, लोगों को दिया गया मौका कि खरीदें, एंड वो भी हाथों हाथ बिक गए. तो फुल हाउस क्राउड रहने वाला है क्राइस्टचर्च में, जहां पर क्रुसेडर्स आज ब्लूज को होस्ट करने वाली है. और इन दोनों के बीच में इस साल जो खेल हुआ है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. पहली बार जब इस साल क्रुसेडर्स और ब्लूज का आमना सामना हुआ, दिस हैपेंड हियर इन हियर एट ईडन पार्क, और दैट वाज वीक 4 ऑफ 16. चौथे सप्ते में ब्लूज ने क्रुसेडर्स को 29-13 से हराया था. उसके बाद में ब्लूज वेंट टू क्राइस्टचर्च इन वीक 13. वीक 13 में क्रुसेडर्स ने ब्लूज को 36-20 से हराया. तो ऑल इन ऑल आई थिंक जिस तरह के स्टेट्स हम देख रहे हैं, आई थिंक इट द टू टीम्स, आज कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्रुसेडर्स हैव द होम ग्राउंड एडवांटेज, तो शायद दिस माइट वर्क इन देयर फेवर, या फिर दिस माइट एनकरेज ब्लूज टू वर्क इवन हार्डर. क्योंकि भाई अगर हार गए तो दे कैन नॉट गो फर्दर इन टू द सेमीज. तो अ लॉट एट स्टेक फॉर बोथ द टीम्स. क्या क्रुसेडर्स आज भारी पड़ती है ब्लूज पर, या फिर ब्लूज कैन टेक सम सरप्राइजेस आउट ऑफ देयर हेड टू अपसेट द क्रुसेडर्स इन देयर होम ग्राउंड. दिस इज हैपनिंग एट 4:35 PM. अभी से लगभग 3 घंटों बाद ये मैच शुरू हो जाएगा, तो इसके अपडेट्स आप तक हम पहुँचाते रहेंगे. एंड उसके बाद रेड्स और चीफ्स के बारे में बातें करें. ये दोनों टीम इस साल इन्होंने एक ही मैच खेला है वीक 13 में, जिसमें चीफ्स की जीत हुई थी 31-21 से. नाउ रेड्स हैव द हैबिट ऑफ अपसेटिंग चीफ्स. क्या आज वैकातो में हैमिल्टन में रेड्स अपसेट कर सकती है, या फिर चीफ्स विच हैज़ बीन ए फॉर्मिडेबल साइड दिस ईयर एज वेल, क्या चीफ्स दे कैन गेट फर्दर एंड देन क्वालिफाई इन टू फॉर द सेमीफाइनल्स हैपनिंग नेक्स्ट वीक. तो क्या आपको लगता है, अपना ओपिनियन आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं 5599 पर.

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: There are days when you nail parenting, but with no food in the fridge, this isn't one of them.
3: Dash! Savior of the lunchbox.
2: With DoorDash, get groceries delivered straight to your door in a dash.
3: Dash!
4: The savings are fully stocked this weekend at Briscoe's, with huge savings store-wide, like an incredible 40 to 60% off all electrical. So rush into Briscoe's, stock up and save. Sale ends Sunday. See online for T's and C's.
5: Oi, you! Keen for a mint day out? Field Days is back at Mystery Creek and it's bigger than ever. Four massive days, over 1,000 exhibitors and heaps of gear, kai and good yarns. June 10 to 13, Mystery Creek, Hamilton, where town meets country and innovation meets good old Kiwi ingenuity. Don't miss the ultimate rural get-together. Field Days, good times, done Kiwi style. Grab your tickets now at fielddays.co.nz.
6: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा एन्ना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
7: हाँ. अच्छा
6: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
7: मिसेस सिंह
8: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
9: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहूहू कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
10: The beat of Bollywood
11: world's best hamari koi branch nahi hai
12: yo
10: radio pub hum par aapke saath hain jikash
13: That's right, हम पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ एंड 12 मिनट रह चुके हैं 2 बजने में और आज का पहला सवाल हम आपसे कर लेते हैं एक बड़ी ही बढ़िया मूवी थिएटर्स में लग चुकी है इंडिया में ये रिलीज़ हो चुकी है आई चेक आउट द डेट्स और द टाइम्स फॉर दिस मूवी इन न्यूजीलैंड एंड आई अपडेट यू शॉर्टली लेकिन उस फिल्म का ये डायलॉग या फिर पूरा नहीं हम डायलॉग बजाएंगे क्योंकि इट्स अ बिट रेटेड और इसको रेटिंग भी दी गई है कि R13 या फिर R16 है तो आई विल बी वेरी केयरफुल कि कुछ अनाप शनाप आपको ना सुनाई दे बस एक आवाज़ है इस आवाज़ को आपको पहचानना है एंड काफ़ी लोग इस एक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं अभी कुछ बीते सालों में इन्होंने अपना मेजर कमबैक किया है तो किस एक्टर की आवाज़ है जिनकी फिल्म रिलीज़ हुई है बस फ्राइडे को कल तो सुने और हमें बताएं कि ये किन की आवाज़ है
14: कभी लगता है कि मैं बहुत बुरा और घटिया किस्म का आदमी हूँ
15: और किससे डर लगता है
14: कि लोग मुझे भूल जाएंगे
15: मैं नहीं
13: ऑलराइट तो दोबारा आपको हम सुनाएंगे ज़रूर और आप सुनकर कोशिश करें पहचानें कि ये किन की आवाज़ है
14: भी लगता है कि मैं बहुत बुरा और घटिया किस्म का आदमी हूँ
15: और किससे डर लगता है
14: कि लोग मुझे भूल जाएंगे
15: मैं नहीं भूल
13: ऑलराइट 5599 पर द मेल एक्टर वॉइस किनकी है ये आप हमें बताएं ऑल्सो जब आप मैसेज भेज रहे हैं प्लीज राइट योर नेम एंड डू लेट मी नो कि आप कहां पर है और अगर आप रोवा से सुन रहे हैं राइट रोवा अगर आप 104.2 FM से सुन रहे हैं राइट FM तो मुझे जानकर अच्छा लगेगा कि हमारे जो लिसनर्स हैं ये कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं सवाल है कि मेल एक्टर वॉइस को आपको पहचानना है जवाब के साथ में अपना नाम और कहाँ पर आप है ये हमें आप ज़रूर बताएं
16: yeah.

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Tori and Ben didn't think they needed a DVS system.
2: We've got double glazing.
1: Have you still got that cold, damp feeling?
3: Yeah, we do.
1: So Tori and Ben got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making their rooms drier and healthier. Say no to that cold, damp feeling. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
4: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz
5: TradeDepot.co.nz. Shop now at Trade Depot, New Zealand's number one bathroom, kitchen and appliance online store. Vented dryer just $289. Heat pump dryer just $599. All-in-one washing machine and dryer $799. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
6: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
7: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI, on your side.
8: Stretch your budget further at Mitre 10. Clean up with a Bosch 15-litre wet and dry vacuum cleaner, now just $129. And score 20% off Cordtech work lights. T's and C's apply. Grab these great deals and more at Mitre 10.
9: For the first time ever at The Warehouse, buy one, get one half price across all Living & Co products. Shop over 7,000 items, including appliances, bedding, furniture and so much more. Hurry, this incredible deal ends Sunday, only at The Warehouse. Conditions apply.
10: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
11: Good afternoon, I'm Karen McCarthy with the latest at 2. The US has approved a $2.58 billion deal to sell naval helicopters to New Zealand. The government unveiled plans last year to buy 5 Seahawk choppers, along with other military equipment, to upgrade the existing fleet of Sea Sprites. The US State Department says the package will strengthen New Zealand's ability to respond to security threats. Paramedics are poised to be able to start prescribing certain medicines to patients in an effort to streamline and ease pressure on the health system. They can currently only administer medication, but Health Minister Simeon Brown says changes are coming.
12: We'll be able to see and treat more patients in their homes without those people having to go and see a doctor to get a prescription or potentially be transferred to an emergency department.
11: Some traffic chaos in Auckland's west after a crash between a bus and two cars this morning. The accident on Te Atatū Road and Te Atatū South around 11:30 completely blocked the busy road. And State Highway 6, the Garston-Athol Highway in northern Southland, is open again after being closed by a crash earlier today. In sport, a disappointing loss for the Football Ferns, beaten 2-1 by Haiti in Spain this morning. Goal scorer Claudia Bunge says they need to be better at set piece and apply more pressure.
13: We're just getting played around too easily, so yeah, if we can tidy up those next two things going into the next game, I think, yeah, we'll be a lot better from it.
11: The Football Ferns play Morocco on Wednesday morning. Football updates brought to you by Hisense. And a top-of-the-table clash in Netball's ANZ Premiership this afternoon. The Tactics host the Mystics in Christchurch from 4 p.m.
10: Sports News. Brought to you by Sona Sensar, Papatoi and Mount Roskill.
14: Weather update.
3: सुबह से बादल छाए हुए थे और कुछ बदली थी और उसके साथ में बारिश भी हो रही थी। शाम होते होते मौसम में कुछ सुधार नज़र आएगा, अन्यथा इसी तरह का मौसम आप महसूस करने वाले हैं ऑल अक्रॉस ऑकलैंड। आज दिन में टेम्परेचर अराउंड 18 डिग्रीज रहने वाला है, ओवरनाइट टेम्परेचर 13 डिग्रीज होगा। सनसेट आज का 5:13 PM पर होने वाला है।
10: असली ब्लॉकबस्टर
14: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
10: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। रेडियो
3: वन जीरो 104.2 FM और रोबो पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ। इफ यू हैव जस्ट यूनियन, आप सभी का दिल इस्तकबाल कर रहे हैं हम रेडियो पब में। आज सुपर रग्बी के बारे में हमने तो बातें कर ली है, इसके अलावा NRL में क्या कुछ मैचेस होने वाले हैं, डू यू नो अबाउट दिस? वेल, दिस इज वीक 14 out of 27 और इस सप्ताह हमारी टीम वॉरियर्स ये बाय है, ये इस सप्ताह नहीं खेलने वाली है। स्टिल मेंटेनिंग देयर पोजीशन ऑन द टेबल, सेकंड पोजीशन पर है। और इफ़ रूस्टर्स, देखते हैं रूस्टर्स की कल जीत हुई, दे हैव इक्वल्ड वॉरियर्स इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, लेकिन पॉइंट्स डिफरेंस में वॉरियर्स से पीछे है, तो दे आर गोना स्टिक टू द थर्ड पोजीशन। तो वॉरियर्स सेकंड पर है, पैंथर्स 24 पॉइंट्स के साथ फर्स्ट पोजीशन पर है, एंड पैंथर्स टुमारो दे आर प्लेइंग अगेंस्ट वेस्ट टाइगर्स। वैसे आज खेल होने वाला है बिटवीन काउज एंड डॉल्फिन्स एट 7:30 PM। 9:30 PM पर ब्रोंकोज और टाइटन्स खेलेंगे, कल वेस्ट टाइगर्स और पैंथर्स एट 4 PM। 6:05 PM पर शार्क्स और ड्रैगन्स, एंड देन बुलडॉग्स आर टेकिंग ऑन द ईल्स ऑन मंडे एट 6:05 इन द इवनिंग। सुनते रहे हम, और थोड़ी देर में हम सवाल रिपीट करेंगे। कुछ लोग शायद थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द मेल एक्टर वॉइस, तो डायलॉग थोड़ी देर में आपके लिए हम दोबारा प्ले करेंगे। फिलहाल रेडियो पब में मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ।

0: lesbian.
1: Alright, let me repeat the dialogue for you. और ये movie release हुई है India में कल. New Zealand की release date के बारे में अभी कुछ खुलासा नहीं किया गया है. A lot of people are waiting for this movie, लेकिन movie का नाम reveal करने से पहले dialogue आपके लिए सुना देते हैं और आपको पहचानना है कि male actor voice किसकी है. बहुत ही प्रोमिनेंट एक्टर जिनको जब ये इन्होंने डेब्यू भी किया था, कई सारे अच्छे अच्छे फिल्म में इन्होंने की थी और उसके बाद में कुछ सालों के लिए ये गायब हो चुके थे, बैटलिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज विथ अल्कोहल एंड डिड अ मेजर कमबैक. और उसके बाद अब लोग इनको उतना ही प्यार दे रहे हैं जितना प्यार ये डिजर्व करते हैं. तो सुने इनकी आवाज़ और आप हमें बताएं कि कौन है ये शख्स.
2: कभी लगता है कि मैं बहुत बुरा और घटिया किस्म का आदमी हूँ.
3: और किससे डर लगता है?
2: कि लोग मुझे भूल जाएंगे.
3: मैं नहीं भूलूंगी. Come on, baby,
4: दिल किसको देगी? सुंदर हो तुम.
2: हाँ, स्कूल में सब कहते थे मैं हीरो बनूंगा.
4: मैं बनाऊंगी तुम्हें.
1: ऑलराइट, तो कौन है ये बंदा? इनका नाम हमारे पास आप भेजे. ऑफकोर्स प्लीज राइट योर नेम और आप कहाँ पर है. Do let me know on 5599.

0: पिंटरेस्ट पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेशे भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
3: The savings are fully stocked this weekend at Briscoe's, with huge savings store-wide, like an incredible 40 to 60% off all electrical. So rush into Briscoe's, stock up and save. Sale ends Sunday. See online for T's and C's.
4: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
5: Everything you love about Auckland is about to get closer than ever before when the City Rail Link opens this year. New stations will make getting into the city and across Auckland easier and more convenient, because all those trains, buses and ferries, they're connecting to make one super simple network. Cool. Getting to work? Easy. Coffee with friends? Just go. The new City Rail Link will make it all happen. Search ATCRL to discover more. So, where will you go?
6: Trivision Entertainment and Ashik Homes Limited, in association with Mega Finance, Mortgages and More and Peace of Mind Insurance, presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
7: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
6: Saturday, 18th July, 7 p.m. at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
7: Mashallah, bahut acha, very nice.
8: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
9: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
8: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
9: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
10: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।

0: Yo.
1: Radio Pub. हम पर आपके साथ हैं जिकाश.
2: ओके, सवाल जो हमने आपसे किया है इसके लिए कुछ आपको हम क्लूज देना चाहते हैं. पहले इस आवाज़ को आप सुने और क्लूज के साथ में फिर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किन के बारे में हम बातें कर रहे थे. ये बंदा सलमान खान ने इनको एक ब्रेक दिया इन रईस, जो पर्सनली आई डिड नॉट लाइक रईस 3 जो सलमान खान ने की थी, लेकिन उसमें कमबैक किया दिस एक्टर ने. फिर उसके बाद में एनिमल में ये नज़र आए थे और अब बंदर में नज़र आने वाले हैं. तो शायद जानवरों से कुछ ज़्यादा लगाव उनको होने लगा है. तो कौन है ये एक्टर, इनकी आवाज़ आपको पहचान कर हमारे पास भेजना है 15599.
3: अच्छा इंसान हूँ, कभी लगता है कि मैं बहुत बुरा और घटिया किस्म का आदमी हूँ.
4: और किससे डर लगता है?
3: कि लोग मुझे भूल जाएंगे.
4: मैं नहीं भूलूंगी. सुंदर होता हूँ.
2: Alright, तो इस आवाज़ को आपको पहचानना है the male actor voice एंड हमारे पास भेजना है 5599 पर. ऐश है फ्रॉम वेलिंगटन, थैंक यू, आपका मैसेज हमें मिल चुका है. और येस यू आर राइट, इसके अलावा एक भी सही जवाब हमारे पास नहीं आया है और काफ़ी लोगों ने नाम भी नहीं लिखा है. खैर कोई बात नहीं, आप दोबारा अपना नाम हमारे पास भेज सकते हैं.

with the right answer. Now, HSBC 7s, ये भी जारी है in France, और इसके तहत कल काफी सारे matches हुए, and men's pool C में New Zealand ने Germany को 33-7 से हराया है in their latest match, और Fiji 7s ने Great Britain को हराया 26-12 से, South Africa ने Kenya को हराया है 26-5 से, and France की जीत हुई over Argentina 22-14 से. Moving further into the day, आज रात को 8 बजे फिर से खेल शुरू हो जाएंगे, जहां पर Men's Pool B का खेल शुरू होगा between USA and Uruguay. South Africa is playing against Fiji at 6 minutes past 9 o'clock, and Argentina 7s और New Zealand 7s ये around 9:30 9:28 PM पर खेलने वाले हैं.

0: Radio Pub.
1: Keno could take something small and make it big. In fact, it could turn $1 into $250,000. Will your little go a long way? Play in store or online at mylotto.co.nz.
2: Just because you own a business, it doesn't mean your life is split in two. Your personal life shows up in your business space. And business shows up in your personal space. So shouldn't your bank see the bigger picture? At ASB, one banker handles both your business and personal worlds. Because you're one person, not two accounts. ASB, get one step ahead.
3: The savings are fully stocked this weekend at Briscoe's, with huge savings store-wide, like an incredible 40 to 60% off all electrical. So rush into Briscoe's, stock up and save. Sale ends Sunday. See online for T's and C's.
4: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा
5: मुझे भी।
4: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड खुशियाँ पकाए खुशियाँ खिलाए
6: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ बोली बस मेरा फोकस है
7: हाँ। अच्छा
6: बताओ तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं
7: मिसेस सिंह
8: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
9: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
10: At Kogan Mobile, we want to help Kiwis experience mobile Aussie style. That doesn't mean saying, yeah, nah, hey, go on, flyman galah. It means texting emojis without being charged 50 cents and calling your mum without having to call your accountant first. Right now, get a 180GB yearly prepay plan for just $240. That's 15 gigs of data per month for less than $21. So say you beauty to true Aussie value from Kogan Mobile. T's and C's apply.
11: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
0: Kabhi bhi, kahin bhi.
12: Yo.
0: Big Radio Pub. Hum par aapke saath hain Chikash.
13: ऑलराइट सवाल हमने आपसे किया था अबाउट बॉबी डियोल लॉर्ड बॉबी काफ़ी लोगों ने लिखकर भेजा है थैंक यू सो मच आप सभी के जवाब के लिए ये नज़र आने वाले हैं अपकमिंग मूवी बंदर में जो इंडिया में तो रिलीज़ हो चुकी है 5th of June को हमारे डेट के अनुसार कल और न्यूजीलैंड में कब ये मूवी आने वाली है इस पर अभी कुछ खुलासा नहीं किया गया है तो एज सून एज वी गेट दोज डेट्स वी विल शेयर दिस विथ यू एज वेल लेकिन इस मंथ बहुत सारी चीज़ें होने वाली है सुपर रग्बी पैसिफिक ये फिनाले होने वाला है इसके साथ में फीफा वर्ल्ड कप सोका वर्ल्ड कप ये भी शुरू हो जाएगा 12th of June को इसकी ओपनिंग सेरेमनी रहेगी और फिर उसी दिन पहला जो मैच है ये खेला जाएगा द फर्स्ट मैच बिटवीन मैक्सिको एंड साउथ अफ्रीका हमारे समय अनुसार फ्राइडे 12th June को सुबह 7 बजे होने वाला है तो आप इसके लिए ज़रूर तैयार रहे क्योंकि इट विल बी अ गुड ओपनिंग क्योंकि आपका कोई जानने वाला यहाँ पर परफॉर्म करने वाला है या फिर जानने वाली यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं एंड उनका नाम हमसे वेल उनका नाम हमें आपसे चाहिए नाउ आई विल गिव अ बिट ऑफ बैकग्राउंड अबाउट हर शी हेल्स फ्रॉम कैनेडा और जबकि फीफा वर्ल्ड कप कनाडा में ही कनाडा द्वारा भी होस्ट किया जा रहा है तो शी विल बी परफॉर्मिंग देयर डांसिंग एंड सिंगिंग बॉलीवुड से काफ़ी गहरा इनका संबंध है और इन द लेटेस्ट फ्यू इयर्स शी हैज़ बिकम अ डांस आइकन शी इज़ ऑफ अ मोरक्कन डिसेंट और काफ़ी सारे मूवीज़ में इनको आपने नाचते हुए देखा है बतौर एक्ट्रेस भी देखा है एंड नाउ She is also into singing. तो किन के बारे में हम बात कर रहे हैं कैनेडियन नेशनैलिटी है इनकी मॉन्ट्रियल क्यूबेक कैनेडा में इनका जन्म हुआ और मोरक्कन डिसेंट की है बॉलीवुड में काफ़ी मशहूर ये लेडी है और शी इज़ गोइंग टू परफॉर्म ऑन द वर्ल्ड कप स्टेज ऑन द 12th ऑफ जून. किन के बारे में हम बातें कर रहे हैं, अपना जवाब हमारे पास आप भेजिए 5599 पर. शोएब, थैंक यू सो मच, आपका जवाब हमें मिल चुका था. मनिका जी हैं, आपको इस अगले गीत में शामिल कर रहे हैं. दीपा है, दिव्या है, प्लस ऐश, आप सभी को इस अगले गीत में हम शामिल कर रहे हैं.

0: इस साल का वर्ल्ड कप बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि तीन कंट्रीज द्वारा इसको होस्ट किया जा रहा है एंड ओपनिंग सेरेमनी तीन जगह पर अलग अलग समय पर होने वाली है. नाउ लुकिंग एट मेक्सिको सिटी स्टेडियम में एट 11:30 AM लोकल टाइम मेक्सिको के टाइम में बिफोर द मेक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच. नाउ इस मैच के बारे में हम देखें, मेक्सिको और साउथ अफ्रीका खेलने वाली है फ्राइडे 7 AM न्यूजीलैंड समय अनुसार. उससे 90 मिनट्स पहले मेक्सिको में वर्ल्ड कप ओपनिंग फॉर मेक्सिको होने वाला है. 12 June टोरंटो स्टेडियम कनाडा में 1:30 PM लोकल टाइम दैट इज कैनेडियन टाइम कनाडा वर्सेस बोस्निया. ये मैच शुरू होने से 90 मिनट्स पहले कनाडा में वर्ल्ड कप का ओपनिंग सेरेमनी होने वाला है फॉर कनाडा. एंड देन द नेक्स्ट वन इज इन लॉस एंजलिस 12 June को 4:30 PM लोकल टाइम LA टाइम. यहाँ पर USA और पैराग्वे के बीच में जो मैच होगा दैट विल बी ऑन सैटरडे 13 June न्यूजीलैंड समय अनुसार 1 बजे. उससे 90 मिनट्स पहले USA में लॉस एंजलिस में वहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी होगा. वी आर टॉकिंग अबाउट द ओपनिंग सेरेमनी दैट्स हैपनिंग इन कैनेडा टोरंटो में जहाँ पर कैनेडियन नेशनैलिटी की एक एक्ट्रेस है, सिंगर है, डांसर है जो बॉलीवुड से जुड़ी हुई है. बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस इन्होंने अभी हाल ही में किए हैं विद यो यो हनी सिंह और शी इज़ गोइंग टू परफॉर्म. शी इज़ हाइप्ड अप अबाउट इट. इन्होंने अपने इंस्टा पर जो फीफा वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग है ये शेयर किया है विद अ क्यूट मैसेज और इन्होंने कहा है कि यू गॉट टू वॉच द टोरंटो ओपनिंग. और इनके बारे में हम बातें कर रहे हैं, इनका नाम आपको हमारे पास भेजना है 55999 पर. अभी तक एश फ्रॉम वेलिंगटन सिर्फ आपका ही सही जवाब आया हुआ है. एनीबॉडी कैन डांस इसमें ये नज़र आई थी जहां पर टेम्परेचर इन्होंने काफ़ी बढ़ाया था. किनके बारे में हम बातें कर रहे हैं, अपना जवाब हमारे पास आप भेजें.
1: I don't know, all I remember was she wear the Skechers, the light up ones.

0: show with Vijay and Pooja.
1: Puri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज कर रहा
3: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा
4: है।
0: 6 to 10 AM.
5: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
6: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
5: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
6: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
7: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।

0: Bollywood.
1: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: हम पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ. 6 मिनट हो चुके हैं 3 बजकर. एंड इफ़ यू हैव जस्ट ज्वाइंड, आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं. इफ़ यू आर एन एक्टिव टिकटॉक यूज़र, या फिर आप खुद ही टिकटॉक पर सेलिब्रिटी है, या फिर आप बहुत ज़्यादा टिकटॉक रील्स देखते हैं, बस जब भी आपको समय मिले आप आंखें एकदम घुसा देते हैं स्क्रीन के अंदर और रील के बाद में रील आप टिकटॉक देते रहते हैं, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपके ज़रिए टिकटॉक के जो फाउंडर है he has surpassed in terms of wealth, he has surpassed Mukesh Ambani to become Asia's second richest person. Bloomberg Billionaires Index ki agar hum baatein kare to according to this index, Zhang's net worth has risen to $92.8 billion, making him the richest person in China. इनका जो वेल्थ है हैज़ इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली फ्रॉम अराउंड 13 बिलियन इन मार्च 2019 टू नियरली $93 billion टुडे. द राइज इज़ लार्जली लिंक्ड टू द ग्रोइंग वैल्यूएशन ऑफ ByteDance. ये वो कंपनी है दैट्स बिहाइंड टिकटॉक एंड इट्स एक्सपेंडिंग इन्वेस्टमेंट्स इन AI. एनालिस्ट का कहना है कि द सर्च रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन ByteDance's बिजनेस परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर AI एम्बिशंस. Zhang's rapid rise in the Billionaire rankings highlights the growing influence of AI and technology companies in shaping global wealth. So once again, TikTok users, आपने TikTok के founder को बहुत सारे पैसे कमाने में मदद कर दी है. इससे हटकर जो सवाल हमने आपसे पिछले घंटे पर किया है, ये जवाब अभी तक हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 1, 2, 6, 7 people ने सही जवाब दिया है. हमने पूछा है सवाल कि एन एक्ट्रेस ऑफ मोरक्कन डिसेंट, जो जिनका जन्म हुआ है कनाडा में और बॉलीवुड में बतौर डांसर इन्होंने अपना काम शुरू किया और फिर उसके बाद में एक्टिंग भी की है, अब गाना भी गाने लगी है, एंड शी इज़ परफॉर्मिंग इन द कैनेडियन ओपनिंग ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप ऑन द 12th of June. तो किन के बारे में हम बातें कर रहे हैं? बहुत सारे लोग इनके फैन से, बहुत सारे लोग इनके डांस से प्रभावित हुए हैं, एंड ऑफकोर्स without a doubt she is one of the best dance icons of Bollywood. तो किन के बारे में हम बातें कर रहे हैं, जवाब हमारे पास आप भेजते रहे. ब्रिजेश, थैंक यू सो मच आपके जवाब के लिए. पाल एंड ऐश, आप सभी को हम शामिल कर रहे हैं इस अगले गीत में. नॉट फॉरगेटिंग, कल रात को वैदिक सेंटर पर बहुत ही हंगामेदार, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस हुआ इन द ग्रैंड कीर्तन नाइट संध्या, जहाँ पर लोगों ने परफॉर्म करते हुए दिखा ऑल द वे फ्रॉम कनाडा रोनल चंद रोनुको और इनके साथ में महाकाल बॉयज के साथ में जेनेस सेवक. तो ऑल द पीपल दैट वर देयर अप ऑन स्टेज एंड इन द क्राउड, नॉट फॉरगेटिंग जय हो बॉयज, राधे राधे बॉयज एंड महाकाल बॉयज, आप सभी को इस अगले गीत में हम शामिल कर रहे हैं.
0: हम पर आपके साथ हैं जिकाश.

0: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा। कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियां पकाएं, खुशियां खिलाएं।
1: To attract meaty deals on fresh quality sea meat and land meat, I deliver a meeting call. Meater! Meat Week on Now at Pack and Save.
2: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
3: Indelible Homes, your building expert.
4: Trivision Entertainment and Ashik Homes Limited, in association with Mega Finance, Mortgages and More, and Peace of Mind Insurance, presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
5: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
4: Saturday, 18th July, 7 PM at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
5: Mashallah, bahut acha, very nice.
6: Want $500 to spend on your next interest-free phone? Simon's all over it. Join 1NZ on an eligible pay monthly plan this June only to redeem your phone dollars. T's and C's apply. One New Zealand. Let's get connected.
7: And फिर Mrs. Singh से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ, अच्छा, बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस, साड़ा कुछ नहीं।
8: Mrs. Singh,
9: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
10: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू। कॉल 0928130500 और विजिट focuskitchens.co.nz।

0: You're listening to Chikash.
1: Yo.
0: Radio Pub.
2: रेडियो पब में मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ 104.2 FM और रोबा के जरिए आप हमें सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड वंस अगेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहते हैं क्योंकि आपने हमें न्यूजीलैंड का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन बना दिया है और इसके लिए आपसे हम ये वादा ज़रूर कर रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम्स यहाँ पर आपके लिए ही हम सजाते हैं. और इफ़ यू हैव अ बिजनेस आप हमारे साथ कोलैब कीजिए क्योंकि वी विल बी टेकिंग यू इवन फर्दर क्योंकि हम नंबर वन हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें सुनते हैं और उन सभी लोगों तक आपके प्रोडक्ट को आपके बिजनेस को हम पहुंचा सकते हैं. तो गेट इन टच विद अस, गेट इन टच विद काशिका एंड वी कैन डू ग्रेटर थिंग्स मूविंग फोर्थ. क्रिकेट में देखें तो वेस्ट इंडीज़ वीमन और वाइट फर्न्स इनका आमना सामना होने वाला है ऑन द 14th ऑफ जून आने वाले रविवार को और फिर 17th ऑफ

जून को व्हाइट फैंस श्रीलंका से खेलने वाली है. उसके अलावा इंग्लैंड और ब्लैक कैप्स दे आर प्लेइंग एट दी किया ओवल कैनिंगटन में, और दिस मैच इज़ हैपनिंग ऑन द 17th ऑफ जून एज वेल. तो इस पर और भी जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे. सवाल हमने आपसे किया है अबाउट द कैनेडियन बोर्न बॉलीवुड एक्ट्रेस सिंगर एंड डांसर जो परफॉर्म करने वाली है इन द कैनेडियन ओपनिंग ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप. She is none other than Nora Fatehi. तो अगर आपको मालूम नहीं था, now you know, now you've got another reason to watch the Toronto opening ceremony, which is going to happen before the first match that's going to be played between Canada and Bosnia. Saturday, सुबह 7 बजे, आने वाले शनिवार को सुबह 7 बजे, उससे 90 minutes पहले, तो 5:30 पर नोरा फतेही को अगर आप देखना चाहते हैं तो सुबह जल्दी आपको जागना होगा इन द ओपनिंग सेरेमनी हैपनिंग इन कैनेडा बिफोर द कैनेडा एंड बोस्निया मैच ऑन द 13th ऑफ जून सुबह 7 बजे.

Now, if you're someone that loves some... if you're someone that loves some nicely feature or nice feature web series, so this, the next one, it's something that you might like. The Pyramid Scheme and QMS ke baare mein aapko bata raha hoon ki isme aap dekhne wale hain Paramveer Sheema ko, jisko aapne kahi sare movies mein dekha hai, but shayad inka प्रेजेंस आपने फील नहीं किया है. तो अगर इनके बारे में और भी आप जानना चाहते हैं या फिर इनकी एक्टिंग को और भी बारीकी से आप देखना चाहते हैं, सपने वर्सेस एवरीवन, देयर इज अ वेब सीरीज जिसका दो सीजन निकल चुका है अमेज़न प्राइम पर. अम्बरीश वर्मा इन्होंने डायरेक्ट किया है, एक्ट किया है, लिखा है, एंड व्हाट एन एक्सेप्शनल वेब सीरीज़ ये है जो अमेज़न प्राइम पर आप देख सकते हैं. उसके बाद में अभी पिछले ही सप्ताह रिलीज़ हुई है द पिरामिड स्कीम, और इसमें नज़र आ रहे हैं परमवीर शीमा, रणवीर शोरे और आल्फिया जाफरी. तो इट्स अ वेब सीरीज़ जो इज़ बेस्ड ऑन द मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे. इस पर ही आधारित ये वेब सीरीज़ है जिसमें शेखर सुमन भी नज़र आने वाले हैं. गोल्डी, हु इज़ एन एम्बिशियस बट इम्पेशेंट यंग मैन, इज़ ऑन अ क्वेस्ट टू गेट रिच थ्रू ए पिरामिड मार्केटिंग बिजनेस विच स्पायरल्स इनटू अ रोलर कोस्टर ऑफ कायोस, रिस्किंग नॉट जस्ट हिज फ्यूचर बट ऑल्सो द लव एंड ट्रस्ट ऑफ हिज क्लोज नीट जॉइंट फैमिली. तो एक अलग ही अंदाज में आप परमवीर शीमा को इस वेब सीरीज़ में देखने वाले हैं. वेब सीरीज़ का नाम है द पिरामिड स्कीम.

0: Chikash.
1: Yo.
0: Big Radio Pub.
2: उन्नीस मिनट हो चुके हैं चार बजने में एंड कुछ सप्ताह पहले हमने आपको बताया था अबाउट दिस ऑसम ऑसम अपॉर्चुनिटी जहां पर आप एक नेटिव ट्री प्लांट कर सकते हैं अपने आउन बैकयार्ड में इफ़ यू हैव अ बिट ऑफ ग्रीन अराउंड योर हाउस। तो नेटिव सीडलिंग प्लांट करने से आप क्या कर सकते हैं, इससे क्या लाभ होगा? एक तो यू विल बी प्रमोटिंग आवर लोकल नेटिव प्लांट्स और थ्रू ऑकलैंड काउंसिल्स प्लांट मोर नेटिव्स कैंपेन community nurseries across Tamaki Makaurau, they are giving away thousands of native plants bilkul muft mein aur ye aap prapt kar sakte hain alag alag centers se and tomorrow Sunday 7th June ko ye native plant for your household agar aap chahte hain free one you can go to Auckland Botanic Gardens 102 Hill Road the Gardens Auckland mein subah 10 se 2 baje ke beech mein yahan par jaakar apne family ke liye ek pyara sa paudha aap le ja sakte hain. Also, you'll get to meet local experts, you'll learn how to care for your seedlings, and you'll discover how native planting connects to wider ecological restoration efforts. Now, I was watching, मुझे याद नहीं है कौन सी मूवी देख रहा था, और एक aerial shot लिया गया of a city, और उस city में greenery बहुत ही मुश्किल से दिख रही थी, बस कंक्रीट बिल्डिंग्स दिखने में नज़र आ रही थी। एंड आई वाज थिंकिंग कि कंपेयर्ड टू ऑकलैंड हमारे आसपास हरियाली ही हरियाली है एंड वी डोंट इवन नोटिस कि कितना ज़्यादा और कितनी अच्छी तरह से हमें फ्रेश एयर रिफ्रेश्ड एयर मिलता है। लेकिन उन सिटीज़ में जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम हैं वहाँ का माहौल कैसा होगा और कैसा वहाँ का एटमोसफियर होता होगा, आई कांट इवन इमेजिन। तो लेट्स कीप ऑन यू नो मेकिंग आवर ऑकलैंड मोर ग्रीन, और इसके लिए आपको एक नेटिव सीडलिंग पर्सन है, पहले यहाँ पर दिखा गया था कि पर हाउस होल्ड, नाउ इट्स वन नेटिव सीडलिंग पर पर्सन, ये आप लेकर जा सकते हैं एंड अपने घर के आसपास इसको बो सकते हैं, इस पौधे को लगा सकते हैं एंड इन अ फ्यू ईयर्स यू विल प्राउडली से फ़ख्र से कि यार ये पौधा हमने लगाया था, आज इतना बड़ा पेड़ हो चुका है और इसके फ़ायदे कितने सारे लोग लेने वाले हैं। तो प्लांटिंग इवन ए सिंगल नेटिव स्पीशीज एट होम इट इज़ अ वेरी स्मॉल एक्शन दैट कलेक्टिवली स्ट्रेंथन्स वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स इम्प्रूव्स एनवायरमेंटल हेल्थ एंड डीपन्स आवर कनेक्शन टू द नेचुरल वर्ल्ड। तो कल सुबह 10 से दिन में 2 बजे के बीच में आप जाइए ऑकलैंड बॉटनिक गार्डन्स, यहाँ से अपने लिए एक नेटिव प्लांट का पौधा लेकर आइए। आई विल बी मेकिंग माई वे टू ऑकलैंड बॉटनिक गार्डन्स टुमारो टू गेट माई हैंड्स ऑन दीज़।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: 80s के रेट्रो गाने

चार बजकर दो मिनट हो चुका है, जल्द से मौसम की ओर नज़र डालें तो चार बजने पर टेम्परेचर अभी 17 डिग्रीज है और आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर ड्रॉप होता जाएगा। ओवरनाइट टेम्परेचर आज का 13 डिग्रीज रहने वाला है। ओकेजनल शावर्स आप महसूस कर सकते हैं, शाम होते होते भी बदली रहने वाली है और रात को कुछ बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। तो दिस विल बी योर सर्रे द 6th of June। रेडियो पब का सिलसिला जारी है और थोड़ी देर में द बिग शोडाउन ये शुरू हो जाएगा एट इन क्राइस्टचर्च और 1NZ स्टेडियम। क्राइस्टचर्च में क्रुसेडर्स और ब्लूज का बहुत ही बड़ा दंगल, बहुत ही बड़ा टक्कर होने वाला है, जहां पर द ब्लूज फैंस विल बी लुकिंग फॉर टू क्रिएट एन अपसेट इन क्राइस्टचर्च। वहीं पर क्राइस्टचर्च में क्रुसेडर्स अपने होम ग्राउंड में अपने होम क्राउड के सामने जीत हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगी, क्योंकि देयर आर नो अदर ऑप्शंस फॉर बोथ टीम। दे हैव टू विन, दे मस्ट विन टू गो अहेड इनटू द सेमीफाइनल्स। तो क्या ब्लूज अपसेट कर सकती है या फिर क्या क्रुसेडर्स अपना विनिंग स्ट्रीक इन देयर होम ग्राउंड इन टर्म्स ऑफ फाइनल्स जारी रखेगा? अभी तक क्रुसेडर्स को उनके होम ग्राउंड में किसी भी फाइनल्स में किसी ने नहीं हराया है। तो क्या आज ब्लूज ये कारनामा कर दिखाएगी? आपको क्या लगता है? बहुत सारे ब्लूज के फैंस हैं जो अभी हमें सुन रहे हैं, जो ये सुनना जमाम पसंद नहीं कर, ज़रा सा भी पसंद नहीं करते कि मैं क्रुसेडर्स के लिए बात कर रहा हूँ। पर होम ग्राउंड है भाई, दे हैव द अपर हैंड, दे हैव अ बेटर रिकॉर्ड, दे हैव अ बेटर टीम एंड दे हैव बेटर फैंस एज वेल। Go the Crusaders.

अंबर हमारे साथ में जुड़े रहे, क्योंकि थोड़ी देर में आपको हम इन्फॉर्मेशन देंगे अबाउट पसिफिका किड्स स्पेस। ये आज हुआ है और कहाँ पर ये होने वाला है, ये जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमें सुनते रहें ऑन 104.2 FM एंड ऑन रोवा।

0: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
1: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
0: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
1: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
0: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
2: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800 787 111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.

Radio Pub. बाईस मिनट हो चुके हैं शाम 4:00 थोड़ी देर में द अल्टीमेट बैटल बिटवीन द ब्लूज एंड क्रुसेडर्स विल बिगिन और इस पर अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वैसे थिएटर के शौकीन हैं आप पसंद करते हैं थिएटर जाना थिएटर प्लेज देखना तो अवार्ड विनिंग परफॉर्मर जेकब राजन MNZM returns to the stage in the world premiere of Balloon Dog. ये एक deeply moving और timely new production है inspired by Rabindranath Tagore's beloved story Kabuliwala. इसको काफ़ी लोगों ने पढ़ा है, इसके बारे में एक movie भी बनी थी in Bollywood, उसको भी आपने देखा है। तो in a theatre form और अलग ही inspiration, इस inspiration को लेकर एक अलग ही production बनाया गया है for this Kabuliwala by रविंद्रनाथ टैगोर। इसको बनाया गया है बाय अवार्ड विनिंग परफॉर्मर जेकब राजन MNZM द्वारा और इसको रिटर्न लिखा गया है बाय जेकब राजन एंड जस्टिन लिविस, डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिविस। ये सेट किया गया है इन ए 21st सेंचुरी ऑकलैंड एटमोसफियर। ब्यूटिफुली टेंडर टेल फॉलोज द अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप बिटवीन अ 5-year-old गर्ल एंड ए लोनली माइग्रेंट वर्कर ओपनिंग हर फैमिलीज आइज टू uncomfortable truths about themselves and the world around them. तो ये एक heartwarming play आप experience कर सकते हैं।

हो चुका है, थिएटर जून से 20 जून तक चलता रहेगा, हैपनिंग एट दी क्यू थिएटर इन ऑकलैंड, और इसके लिए आपको हम डबल पास देना चाहते हैं। नाउ बहुत इजी है, अभी आप हमारे पास लिखकर भेजिए BD, और अगर आपको याद है काबुलीवाला मूवी जो बॉलीवुड में बनी थी, इसमें लीड एक्टर कौन थे? बहुत ही मशहूर एक्टर थे, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, लेकिन अगर आपको याद है तो आप बताएं, या फिर आप ढूंढे पता लगाएं और हमें ये बताएं कि काबुलीवाला मूवी जो बनी थी इसमें लीड एक्टर कौन थे। BD लिखे, अपना जवाब लिखे और अपना नाम लिखकर भेजिए हमारे पास 5599 पर।

0: Chikash.
1: Pacific Kids Space. ये workshop आज हुआ at the Manuka Library और this was all about being creative और getting your kids creative with the team at their Siapo Bookmark Craft Activity जहाँ पर इन्होंने आज design किया है, decorate किया है their own very Siapo inspired bookmark while learning about the beautiful patterns and cultural meanings behind traditional Samoan art. तो दिस लवली वर्कशॉप आज समाप्त हुआ है. इसके अलावा अगर आप अपने लोकल लाइब्रेरीज में जाते हैं तो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए कई सारे ऐसे वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं बिल्कुल मुफ्त में. जैसे कि अगर आप एवनडेल में हैं, एवनडेल लाइब्रेरी जो कि 93 रोजबैंक रोड में है, यहाँ पर कोड क्लब ऑर्गेनाइज किया जाता है एवरी थर्सडेज को, रन बाय कोड क्लब आउटियारोआ. यहाँ पर बच्चे जाकर स्टडी कर सकते हैं टू लर्न इंट्रोडक्टरी कोडिंग. प्रोजेक्ट्स रेंज फ्रॉम ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग टू टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग इन पाइथन, एचटीएमएल एंड सीएसएस एंड अदर्स. प्रोग्रामिंग रन्स ड्यूरिंग द स्कूल टाइम और चिल्ड्रन मस्ट बी एबल टू कमिट टू ऑल 8 वीक्स. कोड क्लब्स 2026 के डेट्स है. टेम वन ये फिफ्थ से 26th मार्च तक हुआ. टेम टू के लिए 7th मई से शुरू हो चुका है, 25th जून तक जाएगा. तो यू कांट गेट इनटू दैट. पर टेम थ्री ये 3rd जुलाई से 17 सितंबर के बीच में अपने किड्स को आप एनरोल कर सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त में है. तो फ्री में ही अपने बच्चों को कोडिंग आप सिखा सकते हैं बाय प्रोफेशनल्स. एक घंटे का क्लास रहता है बिटवीन 4 एंड 5 PM हैपनिंग एट दी एवनडेल लाइब्रेरी.

0: Chikas.
1: एक मैनहंट अभी जारी है एशबर्टन में और फॉर गुड रीजंस, क्योंकि अगर ये बंदा मिल जाता है तो इनको बहुत सारे पैसे दे दिए जाएंगे. वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट द पावर बॉल जो जीता गया ऑन वेंसडे. $28.6 million का ये लोटो स्ट्रक हुआ है इन एशबर्टन फोर स्क्वायर नेदरबी में, जहां पर एक बंदे ने, जैसे कि मैंने कहा, $28.6 million जीत लिया है. लेकिन अभी तक ये सामने नहीं आए, शायद इनको मालूम ही नहीं है कि इनके पास विनिंग टिकट, या फिर मालूम है और ये बस सावधानी से बिना किसी को जताए, बिना किसी को भनक पड़ने से पहले अपना पैसा जो है ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या फिर प्लान कर रहे हैं किस तरह से क्लेम करें, किस तरह से इसको मैनेज करें और किस तरह से इसको स्पेंड करें. तो इफ़ यू आर इन एशबर्टन, अगर आपने टिकट लिया था फॉर लास्ट वीक वेंसडे के ड्रॉ के लिए एंड अभी तक आपने टिकट्स चेक नहीं किए हैं, यू माइट जस्ट बी द विनर ऑफ द $28.6 million लोटो. Crusaders have just pulled it back. और अभी सेवी रूइस ने स्कोर किया है इन द 11th मिनट, 11 मिनट 35 सेकंड्स में. Crusaders 5-7 to the Blues. Conversion yet to come from the Crusaders.

0: रेडियो हम पर आपके साथ हैं जिकाश।
1: ऑलराइट, 12 मिनट हो चुके हैं, 5:00 गेम बिटवीन द क्रुसेडर्स एंड ब्लूज अब 33 मिनट्स में पहुंच चुका है, जहां पर क्रुसेडर्स की जीत अब 26 पॉइंट्स टू 14 से हो रही है। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट, वी आर गोना टॉक अबाउट रग्बी वर्ल्ड कप 26 के लिए कुछ चेंजेस हुए हैं इन टर्म्स ऑफ रूल एंड इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द गेम। मोर VAR वीडियो असिस्टेंट रेफ जो है, इनको थोड़ा और ज़्यादा पावर दिया गया है इन टर्म्स ऑफ द VAR कैन नाउ स्टेप इन टू आस्क द रेफरी फॉर एन ऑन फील्ड रिव्यू ऑफ रॉन्गली अवॉर्डेड सेकेंड येलो कार्ड्स, मिस्टेकन आइडेंटिटी इंसिडेंट्स एंड इनकोरेक्टली अवॉर्डेड कॉर्नर किक्स। इसके साथ में प्लेयर एंड टीम कंडक्ट रूल्स। नाउ रेड कार्ड अब लाया गया है, नॉट लाया गया है, कैन बी इश्यूड, जहाँ पर अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन प्लेयर्स और किसी भी प्लेयर ने अपने मुंह पर अपनी जर्सी डाल ली, यानी कि अपना मुंह ढक लिया ड्यूरिंग एन आर्गूमेंट, तो डायरेक्टली उनको येलो कार्ड दिया जा सकता है। हाइड्रेशन ब्रेक्स ये अभी भी रहने वाला है। द ब्रेक्स विल लास्ट 3 मिनट्स एंड ओका इन ईच हाफ एट एवरी गेम ऑफ द टूर्नामेंट। टाइम वेस्टिंग इन फोकस, रेफरीज आर गोइंग टू यूज टाइम काउंटडाउंस ऑन सब्स्टिट्यूशंस, थ्रो इन्स एंड गोल किक्स एंड आर ऑल्सो एड्रेसिंग ऑन फील्ड डिले इंजरी डिलेज। तो जहाँ पर प्लेयर्स बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया करते थे, जब अगर वो जीत रहे हैं तो टाइम किल करने के लिए बस टेक्टिक्स यूज करते थे, तो अब प्लेयर्स विल हैव 10 seconds टू लीव द पिच आफ्टर सब्स्टिट्यूशन बोर्ड हैज़ बीन रेज्ड एंड दे हैव टू एग्जिट द फील्ड एट द नियरेस्ट बाउंड्री लाइन। नहीं कि दूसरे साइड पर है और फिर उधर से दौड़कर ऑन द अदर साइड जाकर वो अपने बेंच पर बैठे, नहीं, जिस कोने में है उसी एग्जिट को उनको लेना होगा। इफ अ गोलकीपर गोज बियॉन्ड 5 seconds द अपोजिंग टीम विल रिसीव अ कॉर्नर किक। वाओ, इफ अ थ्रो इन गोज बियॉन्ड 5 seconds द बॉल विल बी गिवन टू द अपोजिशन फॉर अ थ्रो इन। As for injuries, players who get treatment on the field will now be required to spend at least 1 minute off the pitch to await the next stoppage in play. So these were some of the adjustments, yeah, changes that will be taken into account for the FIFA World Cup 2026.

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: चौबीस मिनट हो चुके हैं 5:00 और उधर क्राइस्टचर्च में सेकंड हाफ का खेल बस थोड़ी देर में शुरू होगा क्योंकि फर्स्ट हाफ का खेल खत्म हो चुका है बिटवीन क्रुसेडर्स एंड द ब्लूज। और अब जो ब्लूज के फैन हैं अब ब्लूज के फैन बहाने खोजने लगेंगे कि क्यों क्रुसेडर्स से उनकी हार हो रही है। 33-14 से ब्लूज की हार हो रही है। एक रेड कार्ड हुआ है ब्लूज के प्लेयर को एंड फेयर एंड स्क्वायर नो वन कैन डिस्प्यूट दैट। इट वाज अ वेरी हार्ड हिटिंग इलीगल टैकल जो किया था ब्लूज के प्लेयर ने ऑन क्रुसेडर्स एंड राइटफुली सो उनको येलो कार्ड दिया गया ऑन रिपोर्ट फॉर रेड कार्ड और उस येलो कार्ड को तब्दील किया गया इन अ रेड कार्ड एंड दस प्लेइंग विथ 14 मैन नाउ ब्लूज आर बिहाइंड क्रुसेडर्स बाय 33-14। लेकिन अपने किए कराए का नतीजा है ये। और कुछ लोग कह रहे हैं कि रेफ को खरीदा गया है। भाई मुझे तो ये पता था कि ब्लूज़ टीम के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। कुछ फैंस का इनका कहना है कि इतने ज़्यादा पैसे हैं कि वो केयर ही नहीं करते कि ईडन पार्क में लोग देखने के लिए आए या नहीं। तो बहुत ज़्यादा पैसे, तो इतने ज़्यादा पैसे थे तो क्यों नहीं आपने ही रेफ को ख़रीद लिया। बस मिर्च मसाला करते हुए आज का प्रोग्राम हम एंड करेंगे। क्रुसेडर्स लीडिंग ब्लूज़ बाय 33-14। लेट दैट सिंक इन।

धीरे धीरे करके हम कार्यक्रम की समाप्ति पर पहुंच रहे हैं। वैसे जाने से पहले कुछ और भी बातें आपसे करनी है। फेशियल रिकग्निशन वॉच लिस्ट मेड परमानेंट इन क्राइस्टचर्च सुपरमार्केट्स आफ्टर ट्रायल, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जो फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी सुपरमार्केट्स में डाली गई है टू यू नो टू फिगर आउट इफ पीपल एंट्रिंग द शॉप थोड़े से डोजी है या नहीं, या फिर इनके चेहरे को डाटाबेस में डाला जाता है टू फर्दर डू बैकग्राउंड चेक्स, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम। अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो भाई किसी चीज़ के बारे में वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे क्राइस्टचर्च में सुपरमार्केट में ट्रायल हो रहा था फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एंड हैज़ बीन मेड परमानेंट एंड एक्सटेंडेड टू अनदर स्टोर आफ्टर शोइंग मेजरेबल सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स। आफ्टर 3 month ट्रायल Foodstuffs South Island has decided to keep the technology at New World St. Martin's and Pak n Save Papua Nui and Moore House while expanding it to New World Stanmore. The initiative, which ran from October 2025 till January 2026, was designed to identify and manage individuals with a history of serious and harmful behavior in stores. Foodstuffs South Island retail head Kent Mahan said the results gave the cooperative confidence the system could be deployed carefully and responsibly. I think it is really good, ताकि अगर कोई re-offender या फिर पहले जिसने offend कर चुका है या फिर जिन्होंने shoplift किया है, they had bad behavior in the store, जब ये re-enter करते हैं security gets informed और they sort of get ready to tackle any other instances जो वो रिपीट करने वाले होंगे। तो आई थिंक इट्स अ गुड मूव, इट शुड बी डिप्लॉयड टू मोर एंड मोर स्टोर्स। बाय द वे, क्रुसेडर्स आर एट 40 एंड ब्लूज आर एट 14।

ऑलराइट, मेरा तो कल्टी मारने का वक्त यहाँ से हो चुका है और जाते जाते थोड़ा सा नमक हम फेंकना चाहेंगे कुछ जलते हुए लोगों पर जो अभी खेल देख रहे हैं बिटवीन क्रुसेडर्स एंड ब्लूज। 40 पॉइंट्स क्रुसेडर्स के पास है, 14 पॉइंट्स ब्लूज के पास है। 52 मिनट्स हो चुका है नाउ, ऑल इन ऑल 27 मिनट्स एंड 6 सेकंड्स का खेल बचा है। ऑल द बेस्ट टू ब्लूज, अगर ये चाहे तो कम बैक कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो ये अगला गीत हम छोड़े जा रहे हैं फॉर दी ब्लूज फैंस। और इस गीत में हम याद कर रहे हैं टू ऑल दी क्रुसेडर्स फैंस एंड ऑल द ब्लूज फैंस, स्पेशली गोइंग टू राधे राधे वॉइस, जितने भी वहाँ के ब्लूज़ के फैंस हैं आपको हम शामिल कर रहे हैं, एंड ज्ञान प्रकाश श्रद्धा संघ के जितने भी ब्लूज़ के यू नो कोचेस है, जैसे कि अश्मित है और योगेश जी है एंड ईश्वर दयाल जी हैं, आपको राजेश जी हैं, आप सभी को इस अगले गीत में हम शामिल कर रहे हैं। हम मिलेंगे आपसे अब कल शाम 6 पर, जहां पर और ज़्यादा बातें करेंगे अबाउट द मैच दैट इज़ ऑन हैंड, और उसके बाद में रेड्स और चीफ्स का मैच आने वाला है एट 7 PM, तो उसे भी देखें। ब्लूज़ चाहेंगी कि चीफ्स जीत जाए ताकि हार कर भी ये सेमीफाइनल्स में चल जाए, तो नाउ आफ्टर लूजिंग ब्लूज विल बी चेयरिंग फॉर चीफ्स टू विन। तो मिलते हैं कल शाम 6 पर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें एंड जो भी कर रहे हैं मेक श्योर यू आर सेफ आउट देयर, और डोंट कट कॉर्नर्स, डोंट टेक रिस्क। नमस्कार।

0: चाहे आप हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: बाढ़ किसी वक्त भी आ सकती है, क्या आप तैयार हैं? बारिश शुरू होने का इंतजार ना करें, गटरों को साफ रखें, खुली चीजों को बांध लें, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार रखें। अभी की गई तैयारी बाढ़ के तनाव से बचा सकती है। तूफान से आगे रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अधिक जानकारी के लिए विजिट auckland emergency management.govt.nz/floods।

0: ऐसी लव स्टोरी और ऐसी शादी तो हमने ना पहले कभी देखी थी ना कभी सुनी थी।
1: है जवानी तो इश्क होना है। Now showing in cinemas.
2: I am going to expose this fraud.
1: Distribution partner Forum Films. Rated M.
3: Wow.
4: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
5: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?

0: dryers, fridges and dishwashers. And today we have big whiteware deals. Get a Robinhood 6.5kg washing machine only $3.98 or a Samsung 310-litre fridge only $8.99. Need it today? No worries. We have heaps of stock. Take it home today. Only at Big Save.
1: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा एना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ बोली बस मेरा फोकस है
2: हाँ। अच्छा
1: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
2: मिसेस सिंह
3: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
4: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: गाना बजा दूं।
1: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
2: कभी भी कहीं भी मस्त मलंग जो
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
4: The savings are fully stocked this weekend at Briscoe's with huge savings store-wide, like an incredible 40 to 60% off all electrical. So rush into Briscoe's, stock up and save. Sale ends Sunday. See online for T's and C's.
5: Walmsley Road has reopened. Thanks for your patience while we upgraded the road to help reduce flooding in Mangere. Find out more by searching Auckland Council to Ararata Creek.
6: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
7: मुझे भी।
6: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।

भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।

0: बॉलीवुड
1: जो की करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स Breakfast show with VJ and Pooja.
2: पूरी प्लानिंग से आए हैं शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
3: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब
4: बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
3: मेरे को समझ भी नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
4: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।

0: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
1: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
0: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
1: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
2: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
3: Shop now at Trade Depot, New Zealand's number one bathroom, kitchen and appliance online store. Vented dryer just $289. Heat pump dryer just $599. All-in-one washing machine and dryer $799. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
4: Rebel Sport has winter sorted. Layer up with deals on puffers, jackets, sweats and fleece, built to keep you warm when the temperature drops. Plus, global football fever is kicking off. Grab your fan gear and get game day ready. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
5: Kiwi kids are active kids. Creative kids.

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
3: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
4: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
3: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
4: Available at selected branches. T's and C's apply.
5: The savings are fully stocked this weekend at Briscoe's, with huge savings store-wide, like an incredible 40 to 60% off all electrical. So rush into Briscoe's, stock up and save. Sale ends Sunday. See online for T's and C's.
6: Trivision Entertainment and Ashik Homes Limited, in association with Mega Finance, Mortgages and More and Peace of Mind Insurance, presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
7: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
6: Saturday, 18th July, 7 PM at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
7: Mashallah, bahut acha, very nice.
8: Oh no, we'll be late.
9: We'll be right. I'll call the AA.
10: Award-winning road service. Just one of the many benefits of AA membership. With over 45 ways to save every day, it's the membership with more. Join us today at aa.co.nz.

उन बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: मेरे को देख के हंस रही थी ना, अच्छा लगा ना मैं?
1: तो क्यों अच्छा लगेगा?
0: तो फिर मेरे को देख के हंस क्यों रही थी?
1: मैं तुझे देख नहीं रही थी, इसलिए तू कौरा बौरा हो रहा था ना।

0: डिस्को हो या रॉक एंड रोल, डाउनलोड रोवा टू लिसन हम 80s जुकबॉक्स।
1: इंतहा हो गई इंतजार की।

love you all. दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी।

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: Non-stop Bollywood.
3: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
2: हम playing Bollywood's biggest hits.

Night Flight on Hum. Nasila, nasila, tera nena.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
2: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
1: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
3: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।

0: ऐसी लव स्टोरी और ऐसी शादी तो हमने ना पहले कभी देखी थी ना कभी सुनी थी।
1: है जवानी तो इश्क होना है। Now showing in cinemas.
2: I am going to expose this fraud.
1: Distribution partner, Forum Films. Rated M.
3: Wow. Night Flight.

0: विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
3: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
2: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
3: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
4: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
5: Media voice complaints. How can I help?
6: My kids won't shut up.
5: I'm not sure that's our problem.
6: They keep reciting lines from one of your radio ads.
5: Aw, cute.
6: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
7: What do you want, son?
8: I want me some of that real southern chicken.
6: 28 times.
5: So where are you now?
6: Eating chicken.
9: Advertise with
10: Media Works.
9: New Zealand listens to us.
11: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
12: हाँ, अच्छा
11: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस, साडा कुछ नहीं।
12: मिसेस सिंह,
13: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
14: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
15: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स,
16: बजे हिट गाने।

0: Flight on Hum.
1: Driving you home.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला।
4: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
5: अच्छा आप दिलजीत तो
4: आए आए बताओगे यार।
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku. Smart.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या
3: बहुत खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
2: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
4: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून।
0: वीकडेज 6 to 10 AM।
5: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
6: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
5: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
6: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
7: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
8: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।

vägmar har vinden. Då vägmar har vinden. Night Fly.

0: हम के दिन चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: सेव करो माइटी 10 मेगा वेस्टगेट और हेंडरसन में विद 25% ऑफ पिंक स्टफ क्लीनिंग और नोवो वायर वार्डरोब्स और 50% ऑफ सिलेक्टेड सिस्टम प्लस स्पेंड $20 एंटर ऑनलाइन एंड गो इन द ड्रॉ टू विन 5 grand एंड June 30th T's and C's apply.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: biggest hits.
1: Budget hit the gun day.
2: Wow.

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।

0: Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: स्ट्रीमिंग ऑन रोवर।
1: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
2: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
3: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
2: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
3: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
4: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।

भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।

जो कपि हैं, ये जो हनुमान हैं, इन्होंने हम पर जो ऋण चढ़ा दिए हैं उनसे हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। कपि से उऋण हम नाहीं, भरत भाई

Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: आप सुन रहे हम 104.2 FM और मैं हूँ आरज़ाफ के साथ. सहजा योगा ग्लोबल मेडिटेशन इज करेंटली डूइंग फ्री मेडिटेशन क्लासेस. सो ये सब के लिए है, नॉट जस्ट लाइक यू नो प्रोफेशनल योगा पीपल जो हर बार करते हैं, बट दिस इज ऑल्सो फॉर पीपल जिसने कभी भी नहीं किया है योगा, एंड ऑल्सो फॉर एनी एज ग्रुप विच आई लव. सो आपकी फैमिली के साथ जा सकते हो टुगेदर, एंड इट्स बिल्कुल भी फ्री, फ्री ऑफ चार्ज. और उनके एम है टू सपोर्ट मेंटल वेलबींग, रिड्यूसिंग यू नो टू रिड्यूस स्ट्रेस और प्रमोट इनर पीस, एंड विच वी लव. सो थैंक यू सो मच सहजा योगा ग्लोबल मेडिटेशन फॉर डूइंग दिस फॉर आ पीपल हेयर. सो ये फोर लोकेशंस में होने वाला है. सो आई एम गोना स्टार्ट ऑफ फ्रॉम मरीज बे. मरीज बे में एड्रेस है आउट्रम हॉल, 478 बीच रोड, एंड ये लोकेशन में यू गेट योर फ्री मेडिटेशन क्लासेस एवरी मंडे टाइम 7:15 PM से 8:15 PM तक. दूसरा है माउंट एल्बर्ट, इसका एड्रेस है ओवाइराका सी स्काउट्स हॉल, रेंज व्यू रोड, मरी हलबर्ग पार्क, माउंट एल्बर्ट में. सो ये लोकेशन में इट्स एवरी सैटरडे 10 AM से 12 बजे तक, सो 2 hours के लिए. और हाउविक में वी हैव द ग्रीन रूम अन अक्सब्रिज सेंटर, एंड देन इसमें एवरी ट्यूजडे 7 PM से 8 PM तक. एंड देन वी गॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट नॉर्थ कोट, इसका एड्रेस है 27 Lake Road नॉर्थ कोट ऑकलैंड. ये होने जा रहा है एवरी ट्यूजडे फ्रॉम 7 PM से 8 PM तक. सो दिस इज सच अ कूल इनिशिएटिव फ्रॉम सहजा योगा ग्लोबल मेडिटेशन, प्रमोटिंग यू नो लाइक हेल्पिंग आउट्स एंड सपोर्टिंग पीपल विद मेंटल वेलबींग. सो If you want to go and check it out, these are the locations.
1: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में. वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में.

0: driving you home.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला।
3: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसी ने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
4: अच्छा आप दिलजीत तो
3: आए आए बताओगे यार।
1: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
6: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
5: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
6: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
7: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
8: The savings are fully stocked this weekend at Briscoe's, with huge savings store-wide, like an incredible 40 to 60% off all electrical. So rush into Briscoe's, stock up and save. Sale ends Sunday. See online for T's and C's.
9: MediaWorks complaints. How can I help?
10: I've got this ad going around and around and around in my brain, and it's all because of you guys.
9: You.
10: It's all I can think about.
9: What does it sound like?
10: Yeah, I'd rather not.
9: Go on, why don't you have a crack?
10: Okay, got a plumbing problem.
9: Oh, I need a bit more than that.
10: They've got your back.
9: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
10: Oh, okay.
11: There's no better plumber to give it a crack.
9: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
10: No. I want a plumber.
12: Advertise with
13: MediaWorks.
12: New Zealand listens to us.

आप सुन रहे हम 104.2 FM और मैं हूँ आरज़ू के साथ. ब्रह्मान सभा न्यूजीलैंड इनवाइट्स ऑल डिवोटीज इन आधिक मास कथान याग्ना जो हो रहा है आज एक्चुअली रामकृष्ण मंदिर में 25 ऑनसो एवेन्यू मनुगांव में. सो प्रोग्राम शुरू होने वाला है एट 9:30 AM. And then from 9:30 AM to 10 AM, we have Bedi Stapna Puja. Uske baad 10 to 11, we have Adhik Maas Katha. Or 11 to 12:30 PM tak Hawan, followed by Aarti and Shanti Paath. So yeah, and Prasad and Mahaprasad will also be served after the Puja. So aaj hone wala hai at Ramkrishna Mandir, 25 Onso Avenue, Manukau, from 9:30 AM.

0: breakfast show with VJ and Pooja.
1: पूरी planning से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएं।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज
3: कर रहा है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ में नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: The breakfast show with VJ and Pooja,
4: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.

आप सुन रहे हम 104.2 FM और मैं हूँ आरज़ू आपके साथ. एंड FIH की हॉकी वुमेन्स नेशंस कप होने वाला है इस महीने, एक्चुअली एक हफ्ते में, बिकॉज इट्स ऑन मंडे 15th जून को. एंड ऑन द फर्स्ट डे वी हैव ऑल द टीम्स प्लेइंग आउट. एंड सेशन वन में एक्चुअली सुबह में वी हैव 10:45 में AM में इंडिया. सो इफ यू वांट टू सी इंडिया वर्स USA, आप टिकट्स खरीद सकते हो at hockeynzflicket.co.nz. and there's also like aap ek din ki bhi ticket le sakte ho, ya fir you can also take like days, like you know, pass and stuff. But yeah, so ye hone ja raha hai 15th se 21st June ko, but 15th June ko India versus USA ki game 10:45 AM mein hai. And the location is in National Hockey Center, North Harbour Hockey, Albany, Auckland. And yeah, ye bahut exciting hai kyunki ye this is one of the biggest international hockey tournament, and it's finally hitting New Zealand after a decade. So ye 10 saal se ke baad hi aa raha hai New Zealand mein. So aapko hockey pasand hai, then this might be it.

0: चाहे आप हम के दें चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: जबरदस्त हिट्स
2: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं,
1: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
2: हम
3: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, मैं हूं आरज़ू आपके साथ एंड आई होप आपकी सुबह बहुत अच्छी जा रही है एंड या जस्ट वांट टू से अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, मैं हूं आरज़ू आपके साथ।

आप सुन रहे हम 104.2 FM और मैं हूँ आरज़ू आपके साथ. मुस्कान केयर ट्रस्ट NZ इनवाइट्स आप सब लोग को हमारी कम्युनिटी को टू सपोर्ट द इंटरनेशनल सिकल सेल अवेयरनेस ब्लड डोनेशन ड्राइव ऑन 20 जून दिस ईयर एट द मनुका ब्लड सेंटर न्यूज एंड ब्लड सेंटर. And it's all to shine a light on thalassemia or sickle cell anemia, where conditions are often lifelong and can be lifelong. And then many patients always rely on regular blood transfusions every 3 weeks go just to stay alive. So if you are in the space to or aapko donate karna hai, then hum aapko encourage karte to bring your family and friends to donate. And yeah, so New Zealand Blood Center, Manukau mein, this 20 June. And if you'd like to book your donation, please visit www.muskancaretrust.org.nz. Ya fir aap follow kar kijiye Muskan Care Trust NZ on Facebook and you can find all the information there. Oh.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: सिर्फ रोवा पर।
1: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
2: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
1: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
2: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
3: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
4: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
5: It's boarding time with Instant Kiwi. But where will you land? Hamilton or Hamilton Island? You never know. For your chance to win a mystery holiday for two, get a $5 cross-world ticket at your local Lotto NZ store and enter online. R18 T's and C's apply.
6: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
7: हाँ। अच्छा
6: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
7: मिसेस सिंह,
8: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
9: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
10: Brewing good vibes, Sunday style.
11: Sunday breakfast on Hum.
12: आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, और मैं हूँ आरजू आपके साथ। एंड आज एक्चुअली नेशनल चॉकलेट आइसक्रीम डे है, सो इफ यू आर समवन हु हैज अ स्वीट टूथ एंड यू लव सम चॉकलेट आइसक्रीम, देन दिस इज योर साइन कि आज आप जाकर आपकी फ्रेंड्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ, या फिर आप अपने साथ, आपकी यू नो सेल्फ डेट में जाकर यू शुड गेट सम चॉकलेट आइसक्रीम, बिकॉज टुडे इज नेशनल चॉकलेट आइसक्रीम डे। सो टू एनीवन हु लव्स चॉकलेट आइसक्रीम डे, आई मीन हुएवर लाइक्स चॉकलेट आइसक्रीम, अ वेरी वेरी हैप्पी चॉकलेट आइसक्रीम डे।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: Sunday Breakfast.
1: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और मैं हूं आरज़ू आपके साथ एंड वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट संडे रिचुअल्स क्योंकि अर्लियर दिस ईयर सुनिधि चौहान ने रिवील किया था कि उनकी संडे रिचुअल है टू ईट डोसा विद विद द फैमिली एवरी संडे सो दैट इंस्पायर्ड मी टू आस्क यू आपका फेवरेट संडे रिचुअल क्या है डजंट हैव टू बी जस्ट फूड बट आई वी गॉट अ लॉट ऑफ फूड सो लेट्स जस्ट गो थ्रू दैट So we've got cafes, checking out cafes every Sunday, different ones, so they can, you know, explore more. I love that. We have a lot of parathas, different parathas. Aloo paratha looks like it's winning. Then we have, chole bhature as well. I love chole bhature. That's one of my favorites. And then there is more brunches, cafes, exploring. Oh, but we have one non-food. And it's playing cricket with his friends, which we love. आपकी भी संडे रिचुअल्स है देन लेट मी नो 5599 पर मेरी पर्सनली तो संडे रिचुअल कुछ भी नहीं है इट ऑलवेज चेंजेस संडे एवरी संडे बट आई थिंक माई ओनली संडे रिचुअल इज दैट आई मे हैव टू मेक लंच फॉर माई मंडे या दैट्स द मोस्ट बोरिंग संडे रिचुअल बट इट्स जस्ट अ चोर But yeah, aapki exciting Sunday rituals hoga mere se bhi. So let me know 5599.

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और मैं हूँ आरिज़ आपके साथ. हमारी अवार्ड विनिंग पॉडकास्ट जो है अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिज़बे, दे रिसेंटली वॉन अगेन. सो अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आर अमेजिंग डुओ सैंडी एंड रिज़बे फ्रॉम हम ड्राइव शो ऑल्सो अनफिल्टर्ड. उन्होंने रेडियो अवार्ड्स में ऑनेस्टली दिस इज द थर्ड विन बैक टू बैक विच वी लव. बट एनीवेज इफ यू लव टू कैच अप विद देयर रीसेंट एपिसोड अनफिल्टर्ड में विद शैंकी सिंह जो है एक फॉर्मर WWE सुपरस्टार 7-foot-tall रेसलर हु ऑल्सो is from a small town in Haryana to, you know, he really made it to WWE. And he tells us a lot of exciting stories, unke behind the scenes wali stories, his injuries, his time working with Salman Khan in the film Bharat, and also being trained under the great Kali. So if you'd love to listen to that, text DRIVE to 5599 and I'll send you the link.

0: Chubby Swag is on.
1: Hey, hey.

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
3: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
2: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
3: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
4: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
5: Hear that? That's the sound of discount day. Get 10 cents off per litre at Mobil when you want it, even on game day. Choose your discount day each week only in the Mobil NZ app. Let's go. For a limited time only, T&Cs apply.
6: You already share a group chat, now you can share a discount too. Get 50% off Spark group plans for 6 months when you sign up to an eligible pay monthly leader plan. New Spark Mobile customers only. T&Cs apply.
7: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ, अच्छा बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं।
8: मिसेस सिंह,
9: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
10: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
11: चिल, सिप, स्माइल।
12: दिस इज संडे ब्रेकफास्ट।
13: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और मैं हूँ आरजू आपके साथ। एंड लास्ट थर्सडे को इट वाज सच एन एक्साइटिंग नाइट, क्योंकि हमारी टीम से सैंडी और रुजबे ने बेस्ट एशियन पॉडकास्ट जीता है फॉर अनफिल्टर्ड, एंड इट्स सो कूल, वेरी प्राउड ऑफ द टू ऑफ देम। एंड ऑनेस्टली ऑल द हार्ड वर्क, ऑल देयर वर्क, and just want to give them a big shout out, kyunki honestly very proud of them, and also all the amazing guests that have come by and shared their stories as well show mein, and obviously last but not the least aap sabko jisne unfiltered ko support kiya hai. So when they come back kal on air for Monday ko 4 p.m. se, please congratulate them and give them your love, because they'll be so happy. And yeah, so yeah, big, big shout out to Sandy Orisby.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Still pretending a hoodie is enough? Maybe it's a sign. Kathmandu's winter sale is on now, with great deals on puffers, merino, fleece, rainwear, and heaps more. However you do winter, do it with Kathmandu.
2: Want $500 phone dollars to spend on your next interest-free phone? Simon's all over it. Join 1NZ on an eligible pay monthly plan this June only to redeem your phone dollars. T's and C's apply. One New Zealand. Let's get connected.
3: At Big Save, we work hard every day to keep our furniture and bed prices low, so you can always get New Zealand's best value, furniture and beds. And today, you can save big. Save big on lounge suites. Lounge suites now from $19.99. Save big on sofas. Sofas from $6.99. Save big on beds. Get the snow bed. Queen, king or super king, only $9.99. Save big on recliners. Get two recliners for $6.99, only at Big Save.
4: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
5: हाँ, अच्छा
4: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
5: मिसेस सिंह,
6: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
7: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 30

आप सुन रहे हो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और मैं हूँ आरजू आपके साथ एंड आई लव माय बॉलीवुड मूवीज सो देयर इज मोर एक्साइटिंग बॉलीवुड मूवीज कमिंग सून. रिसेंटली है जवानी तो इश्क होना है रिलीज हो चुका है. ये मूवी में वरुण धवन पूजा है और मृणाल ठाकुर और ये मूवी डायरेक्टेड बाय डेविड धवन. अगला मूवी जो एक्साइटिंग I'm very excited for this movie क्योंकि वेदांग रायना है and he's one of my favorite actors from this new generation for sure. So ये movie release होगा 12th June को and इसका नाम है मैं वापस आऊँगा. And it is a deeply moving multi-timeline romance drama by the one and only Imtiaz Ali. So इसमें दिलजीत दोसांझ भी है by the way. I'm very excited for this movie. So back to back good Bollywood movies. I love it. So उसके बाद we also have Cocktail 2 जो 19th June को release होगा. ये इसमें शाहिद कपूर है एंड रश्मि मंदाना कृति सनोन एंड दिस इज अ स्पिरिचुअल सीक्वल टू द 2012 हिट एंड या इंटरनेशनल बैकड्रॉप में एंड यू नो योर रोम कॉम. उसके बाद 26 जून में वी हैव वेलकम टू द जंगल जिसमें वी हैव दिस इज द वेलकम बाय द वे वेलकम की ये फ्रेंचाइज है. अक्षय कुमार है, संजय दत्त है, सुनील शेट्टी है, दिशा पटानी भी है. I'm excited क्योंकि बचपन से Welcome has been one of my favorite Bollywood comedy movies. And speaking of Bollywood comedy movies, back to back क्योंकि Welcome to the Jungle obviously Welcome की comedy franchise से है. उसके बाद 17 जुलाई को we have धमाल की you know new sequel धमाल 4 जो release होगा. हमारी favorite slapstick comedy. So इसमें we have रितेश देशमुख, Asha Varsi and you know all the iconic people of Tamil. So a lot of exciting movies coming soon. I feel like I'm gonna watch all of these movies. Oh my god, I need to start saving. But yeah, aapko kaun si movie ke liye excited ho, let me know 5599 par.

0: हील्स पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट। द बीट ऑफ बॉलीवुड
2: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: meter.
1: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स में हूं आरजव के साथ. एंड रिसेंटली आपके पास नेटफ्लिक्स है देन यू माइट नो दैट न्यू क्राइम कॉमेडी मूवी रिलीज हो चुका है जिसका नाम है माँ बहन. एंड इट इज़ अ वेरी कियोटिक मदर डॉटर मिस्ट्री मूवी. एंड बेसिकली क्या आई एम गोना से व्हाट द मूवी इज अबाउट बट द सिनॉप्सिस ऑफ द फिल्म इज After an unpopular mother and her two daughters discover a corpse inside their kitchen, they must quickly unite to hide the crime from the traditional neighbors. So, when I saw this, little teaser earlier this year, I was really excited for when this movie was going to release. So I'm so happy it's finally released on Netflix, and I'm definitely going to watch this today. आपने देखा है देन लेट मी नो 5599 पर आपका थॉट्स अबाउट दिस थ्रिलर कॉमेडी मूवी. बट या इफ देयर इज समथिंग यू वांट टू वॉच टुडे ऑन नेटफ्लिक्स मे बी दिस इज द वन यू माइट वांट टू चेक इट आउट बिकॉज जस्ट रिसेंटली रिलीज्ड. एंड यू नो समटाइम्स सोशल मीडिया में दे पुट लाइक स्पॉयलर्स क्लिप्स एंड स्टफ एंड इट माइट रूइन योर फन. सो यू माइट वांट टू गो क्विकली वॉच दिस मूवी बिफोर एवरीवन स्टार्ट्स पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम.

0: लाइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसी ने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप जीत हो,
2: आए आए बताओगे।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सेट समय हो आर साहब के साथ एंड इफ यू मिस्ड आउट एंड वुड लव टू री लिसन टू हमारी ब्रेकफास्ट शो विजय और पूजा देन टेक्स्ट BF 255 99 एंड आई सेंड यू द लिंक बट दे विल बी बैक टुमारो एट 6 AM

0: breakfast show with Vijay and Pooja.
1: Puri planning se aaye hain, shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज कर रहा
3: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने,
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा
0: है। 6 to 10 AM.
4: Save karo Mitre 10 Mega Westgate or Henderson mein with 25% off Pink Stuff Cleaning or Novu Wire Wardrobes or 50% off Selected Sistema. Plus spend $20, enter online and go in the draw to win 5 grand. Ends June 30th, T's and C's apply.
5: At Bunnings, you can keep the cold air out for less with an adored fabric draft stopper, just $10.95. It doesn't cost a lot to winterproof your home. Shop online or in-store. Lowest prices are just the beginning.
6: Everything you love about Auckland is about to get closer than ever before when the City Rail Link opens this year. New stations will make getting into the city and across Auckland easier and more convenient, because all those trains, buses and ferries, they're connecting to make one super simple network. Night out with friends? See you there. Favourite band in town? Let's go! The new City Rail Link will make it all happen. Search ATC.

0: दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नारा

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

बस पाना है जो अंजाम हो आगे है आना चाहो पास तेरे क्यों तुम मुझसे भागे

आपने हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स और मैं हूं आरज़ आपके साथ एंड जस्ट अ क्विक रिमाइंडर कि हमारे पास आपके लिए ढेर सारी प्लेलिस्ट है ऑन rova.nz या फिर rova rova ऑन प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्टिंग ऑफ विद 80s एरा की बॉलीवुड सॉन्ग्स वी हैव बैक टू बैक बैंगर्स उसका नाम है हम 80s जुकबॉक्स एंड वी आल्सो हैव पंजाबी हिट्स बैक टू बैक जिसका प्लेलिस्ट का नाम है चढ़ती कला पंजाबी हिट्स एंड इफ यू लव सूफी और कवालीज देन वी हैव राहत फतेह अली खान की प्लेलिस्ट भी सिर्फ rova में rova

0: Stretch your budget further at Mitre 10. Clean up with a Bosch 15-litre wet and dry vacuum cleaner, now just $129. And score 20% off Cordtech work lights. T's and C's apply. Grab these great deals and more at Mitre 10.
1: Here for all things Brinter. Sniffles on the sofa, frosty footy games, oh riff, cozy evenings with hot soup, and roasts with crispy to a tea veggies. Whatever your plans this winter, see you at Foursquare. What'll it be today?
2: The savings are fully stocked this weekend at Briscoe's, with huge savings store-wide, like an incredible 40 to 60% off all electrical. So rush into Briscoe's, stock up and save. Sale ends Sunday. See online for T's and C's.
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
4: द बीट ऑफ बॉलीवुड
5: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
4: चिल सिप स्माइल
6: दिस इज संडे ब्रेकफास्ट।
7: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स। मैं हूं आरज़ू के साथ। एंड रिसेंटली आलिया भट्ट ने अपनी एक इंटरव्यू में शी रिवील्ड की जब वो छोटी थी एंड आफ्टर वॉचिंग कुछ कुछ होता है शी गॉट सो इंस्पायर्ड शी वेंट एंड कट हर हेयर शॉर्ट बिकॉज़ शी वांटेड टू बी जस्ट लाइक काजोल। यू नो लाइक दैट्स द इम्पैक्ट ऑफ सम बॉलीवुड मूवीज या एनी मूवीज। सो आई वुड लव टू नो आपकी इफ देयर इज लाइक अ बॉलीवुड मूवी और लाइक अ शो इवन जिसमें आपको इट मेड यू फील लाइक आई वांट टू हैव दिस और आई वांट टू डू दिस एंड यू गॉट टू डू दैट because of a film, because I've got something to share as well. Mine's like shows, but I'll let you know next. But let me know 5599 पर आपकी क्या है।

आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स और मैं हूं आरज़ू आपके साथ. एंड लुकिंग बैक, जब आप एक मूवी देखते हो या फिर अ टीवी शो, देन समटाइम्स इट इन्फ्लुएंसेस यू सो मच. इट्स लाइक एज अ चाइल्ड एट लीस्ट व्हेन यू वाचिंग इट यू फील लाइक यू आर पार्ट ऑफ इट एंड यू वांट टू गेट दैट थिंग या फिर यू वांट टू कट योर हेयर शॉर्ट. लाइक आलिया भट्ट कट हेयर शॉर्ट आफ्टर वॉचिंग कुछ कुछ होता है बिकॉज यू वांटेड टू बी जस्ट लाइक अंजलि. सो यू नो थिंग्स लाइक दैट. और मुझे भी व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू लव सोनपरी. इफ यू नो यू नो सोनपरी वाज माय फेवरेट. सोनपरी वाज माय फेवरेट. शरारत वाज माय फेवरेट. एंड ऑफ कोर्स शकलाका बूम बूम. ओ माय गॉड, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट द नेम ऑफ इट. सो व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू हैव लाइक आई फाउंड दिस क्रिस्टल काइंड ऑफ स्टोन. Same like fruity key stone that she rubs on her hand to call Altu Uncle or Sonpari. And I found that on a like a store and I had to buy that. I told my mom, I need this. And then, oh my God, obviously as a child, you want your, you know, your imaginations run wild. And I used to be like, oh my God, Altu Uncle. And I used to like do exactly same as Fruity. And the other one was I also found Sanjugi pencil from Shakalaka Boom Boom. Jahape, you know, it's like the pencil with what's it called, that head. And basically, if you haven't watched Shakalaka Boom Boom, what happens is every time that kid draws with that magic pencil, the item like pops out. So when he draws on a notebook, for example, air fryer, the air fryer pops out. Oh my God, the example I'm giving, it shows ki I'm getting old. But yeah, so when I saw that pencil as well, I used to play that with my cousins. I'd like, I would draw and then I'll put that thing on it. I'm like, shakalaka boom boom. And it's so nice and like so nostalgic thinking about, you know, the impact of shows and movies like that. And I would love to know aapki bhi kaun si ek movie hai ya fir show jisne aapko bahut like memorable childhood diya hai, that you did something or you bought something. And you know, it's just like let's go through some nostalgic moments.

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, मैं हूँ आरज़ू आपके साथ और आई एम गोना बी शेयरिंग विद यू गाइस सम ऑफ द बॉलीवुड मूवीज जो रिलीज होने वाला है न्यूजीलैंड में, सो यू कैन गो एंड कैच देम ऑन द थिएटर्स एएसएपी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस मूवी जो रिसेंटली रिलीज हो चुका है, इसका नाम है जवानी तो इश्क होना है. इसमें वरुण धवन है, मृणाल ठाकुर, पूजा हेज एंड इट इज वेरी हाई एनर्जी का यू नो योर क्लासिक रोम कॉम एंड इट इज डायरेक्टेड बाय वरुण की डैड David Dhawan. उसके बाद वी हैव एन एक्साइटिंग मूवी. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर ये मूवी क्योंकि वेदांग रैना की मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. सो इसका नाम है मैं वापस आऊँगा. रिलीज होने वाला है 12th ऑफ जून को एंड इसमें दिलजीत दोसांझ भी है, वेदांग रैना भी है एंड या इट्स गोना बी अ वेरी डीप इमोशनल टाइम जंपिंग रोमांस ड्रामा डायरेक्टेड बाय नन अदर देन इम्तियाज अली. एंड उसके बाद वी हैव कॉकटेल 2. इसमें रिलीज होगा 19th ऑफ जून को एंड विच हैज़ शाहिद कपूर, कृति सनोन, रश्मिका मंदाना एंड इट इज़ योर यू नो मॉडर्न रोम कॉम फ्रेंडशिप ड्रामास एंड ऑल दैट स्टफ. एंड आफ्टर दैट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस नेक्स्ट टू मूवीज क्योंकि इट्स अ वेरी चाइल्डहुड फेवरेट. सो आई एम एक्साइटेड एज एन अडल्ट टू वॉच दिस न्यू आई गेस chapter of these comedy movies. So Welcome to the Jungle jo ki hai obviously welcome movie ki franchise se ye hai the third installment and Welcome to the Jungle stars Akshay Kumar, Sunil Shetty, Sanjay Dutt, Arshad Warsi, Disha Patani, Jacqueline Fernandez, Paresh Rawal bhi and it's going to be exciting. And then we have Dhamaal 4 jo ki release hoga 3rd July ko and this has Ajay Devgan, Anil Kapoor, Madhuri Dixit, Ritesh Deshmukh and Arshad Warsi. I'm so excited for all. I will definitely be watching all these movies in the theaters because I am a big Bollywood movie fan and I don't think I can skip any of these movies. Mujhe bahut excitement ho chuka hai reading out this all. Aapko kya lagta hai, aap kaun si movie dekhenge? Like which one are you going to watch for sure? 55599 mein let me know.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Warmsley Road has reopened. Thanks for your patience while we upgraded the road to help reduce flooding in Mangere. Find out more by searching Auckland Council Te Ararata Creek.
2: If you want a good restaurant, you look for a queue. If you're looking for a new show, you watch what everyone's talking about. And when you're choosing a KiwiSaver fund, you look for the smart money. With thousands of Kiwis switching to the ANZ KiwiSaver High Growth Fund, search ANZ KiwiSaver to see if it's right for you. ANZ New Zealand Investments Limited is the issuer and manager of the ANZ KiwiSaver scheme. Find a copy of our product disclosure statement at anz.co.nz.
3: The savings are fully stocked this weekend at Briscoe's, with huge savings store-wide, like an incredible 40 to 60% off all electrical. So rush into Briscoe's, stock up and save. Sale ends Sunday. See online for T's and C's.
4: Want $500 phone dollars to spend on your next interest-free phone? Simon's all over it. Join 1NZ on an eligible pay monthly plan this June only to redeem your phone dollars. T's and C's apply. One New Zealand. Let's get connected.
5: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
6: This is Sunday Breakfast.
7: आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स, मैं हूं आरजू आपके साथ। एंड अवार्ड विनिंग परफॉर्मर जेकब राजन MNZM रिटर्न्स टू द स्टेज इन द वर्ल्ड प्रीमियर ऑफ बलून डॉग। ये एक न्यू प्रोडक्शन है